0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य

0: सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
3: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टनचावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। TVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में एक

0: शून्य से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रचानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी, तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई, चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is focusing on four key themes, including nutrition, early education, child protection.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 22वीं कड़ी। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
1: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप, तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा, या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं। वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
0: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
1: जी
0: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
2: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा, बिल्कुल 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मैनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आर फैमिलीज।
0: ओके,
2: तो उस बेंच मार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते।
0: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक होलिस्टिक
1: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिसे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवर और होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं घर केवल उनके लिए, अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो एक पूरी चेन है। वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक
0: यानी काफी लेयर्ड टर्म है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है और शायद उससे पहले आता है कि टॉयलेट हो
0: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांवों में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था
0: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रहे हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है खरीदारिया के लिए और दस्तों के लिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
0: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
1: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी नियार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
0: बिल्कुल।
1: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
0: बिल्कुल।
1: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
0: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
2: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया उसी घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
0: उसी दिन बदल गई।
2: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ चाहिए
0: जी,
2: रिफ्लेक्ट कर आप अब सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप। आप सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं
1: जी,
2: जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है,
0: नहीं।
2: ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़ अमेरिका 33 ब्राजील 21 और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका इंग्लैंड ब्राजील उतने बड़े हाउसहोल्ड्स में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स है पब्लिक हेल्थ के. पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
0: जी.
2: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है. तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है. तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी

0: ही बदलाव है। उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई। ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
2: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया। टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई और सबसे बड़ी बात, इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए एक जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो एक सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
2: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
3: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
2: जी।
3: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए, कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
2: बिल्कुल
3: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती,
2: बिल्कुल
3: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों,
2: दो अलग अलग नजरियों
3: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
2: जी।
3: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब, और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिया, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं मैं, केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा वगैरह वगैरह, उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो
2: जन जनता की कैटेगरी में जी।
3: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
2: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रासरूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
0: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
2: जी,
0: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टीमेट या 2014 के एस्टीमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टीमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
2: जी,
0: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
2: जी।
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है, 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को
2: जी।
0: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
3: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5,00,000 का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
2: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से,
0: इन स्कीमों से। ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
2: जी
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें जिसमें कि एक नया एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना जैसे पवन जी ने कहा सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है, वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, जब पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए
2: जी,
0: वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
2: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पवन जी इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की इस कदम की इस योजना की क्या भूमिका है?
3: देखिए फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
2: जी।
3: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है
2: जी।
3: और आम आदमी कि जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल।
3: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसको कवरेज का, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में

0: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या है? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन

0: मिलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
2: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
3: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
4: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही हैं। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म

0: स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: मिमरेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत,

0: हवा के झोंकों से लो,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
1: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज

0: बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे, उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने

0: आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
6: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
7: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
3: कुसुमलता,
7: वीरेंद्र
3: और हमारी आज की विशेषज्ञ
7: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग
9: शुरू माड़ो ना इन्वेस्टिंग ना कलिके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच

0: रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got license.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जन सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम

0: उठाए जा रहे हैं।
1: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर जर्नी
3: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
2: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
0: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।